कोड़ काया कोड़ कपड़ कोड़ रुपया पार कोड़ मिया कोड़ बेबे खप होए खार कोड़ कुड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलनहा कून मिठा कूड़ माख्यो कोड़ बेपोर नानक बखाने बेनती

भेज ना सका कोई। जाग सलोनड़िए भूल गुरबानी राम, जिन सुन मन अड़ी अकथ कहानी राम।

प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार, हे समरथ अगम पूरन मोहे मया तार। अंधकूप महापयान नानक पार उतार। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुदया गै अरदास। मैं होर थाऊ नाही जिस पह करो बिनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। तुदया गै अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी बड़ियाई, कोई ना न जाने मेरा। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ। परम सत्कार योग, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों, सतगुरु महाराज दी पावन हजूरी च जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी दा लाहा प्राप्त कीता है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार, अज दा पावन शब्द भाई साहब जी पासों सरवण कीता। पावन शब्द दी विचार नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है, मन बिरतियां नू एकाग्र करदे हुए निमाणे जे हो के समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणा च जुड़न दा यतन करिए। गुरु पातशाह जी अज दे शब्द दे राही मनुखी दुनियावी जीवन नू जो समझाउणा चाहुंदे हन, एक मन एक चित हो के समझण दा

क्योंकि सतगुरु ने मैनू दसिया है, फिर समझ लियो थोड़ा जा। हौं बलहारी सतगुर चरना, मैं सतगुरु दे चरना तो बलहारे जावांगा, सदके जावांगा। क्योंकि सतगुरु ने मैनू दसिया है कि उदा जिड़ा नाम है वो बिल्कुल सच्चा है, उदी जिड़ी बाणी है वो अमृत रस नाल भरपूर है। जिहड़ा उपदेश मैनू सतगुरु ने दिता है, इत्थे मंत्र दा अर्थ उपदेश है। जिहड़ा सतगुरु ने मैनू उपदेश दिता, उहदे विच उपदेश की है? आद सच, जुगाद सच है, पी

आत्मी सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभ तू वरतंता घर सुख वसिया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। मंत्र तो भाव उपदेश है, जिन्हें गुरु दा उपदेश दृढ़ कर लिया पक्का कर लिया पर वही करेगा जिन्हें सुनिया है। जिन्हें गुरु दा उपदेश सुनिया ही नहीं वो दृढ़ की करेगा। जिन्हें गुरु दा उपदेश सुन के अपने अंदर मन विच वसा लिया घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। इत्थे मंत्र दा अर्थ है उपदेश। फिर समझ लियो जिस समय मैनू उदा दर्शन होएगा मैं सब तो पहला अपने सतगुरु दे चरणा तो बलहारे जावांगा क्योंकि मैनू दर्शन सतगुरु दे चरणा दे सदके होया है। ते सतगुरु ने मैनू उपदेश जिहड़ा दिता सी उहदे विच दस्या सी कि जिहदा तू दर्शन करना है वह सच्चा है सच है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच उसदी भी है। और उहदा जिहड़ा नाम है उहदी जिहड़ी बाणी है वह अमृत रस नाल भरपूर है उहदे नाल तैनू आत्मक जीवन मिलेगा क्योंकि फुल ताई खिड़ेगा ना जे उदों पानी लगेगा। जे वह पानी ना लगे तो फुल खिड़ना नहीं मुरझा जाना है। साडू आत्मक तल ते जदों अमृत नाम जल मिलेगा ताई असी अंदरों खिड़ सकते हैं ताई अंदरों आपां जिहड़े खिड़े हो सकते हैं। भगतां कोल विगास क्यों है पूरन खिड़ाओ विगास कहिंदे पूरा खिड़िया होना। नानक भगतां सदा विगास क्योंकि उन्हां कोल यह नाम रस है उन्होंने ये नाम रस पीता भी है चखिया भी है। तो सतगुरु जी तो पता लगा उपदेश जदों मिलिया कि उहदी बाणी हे वाहिगुरु जी तुहाडी बाणी अमृत रस नाल भरपूर है और तुसी सदीवी हो सदा हो

मिलने, जिदे मैं दर्शन करने है। सतगुरु दे चरणां दे सदका मैनू पता लगा भी वो ते तख्त निवासी है। मैं ते दुनिया दे तख्त ते बैठन वालियां अगे झुकदा रहा, पर पता लगा कि जिदे नाल मैं जुड़ना है वो ते तख्तां दा मालक है, वो ते रजान राज है। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुध तखत, उदा तखत ते सच्चा है, ना ढहण वाला ना मिटन वाला। ये तख्तां वाले भी उहदे अगे आके झुकदे ने। जदों असीं बारह माह का पाठ करते हैं महाराज कहिंदे हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है, जिस अगे सब निवन, जिदे हुक्म अगे किसे दा हुक्म नहीं चलदा। एक राजा हुक्म करदा है, दूजा अपना हुक्म चलाउंदा है, पर इत्थे ते उहदा हुक्म चलना है, उहदे अगे किसे दा हुक्म नहीं चलना, उहदे अगे किसे दा जोर नहीं चलना। हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म, ना उहदा हुक्म बदलिया भी नहीं जा सकदा। एक राजा हुक्म करे ते जे उह ना कह लो कि चंगा लगे, फिर उहनू बदलिया भी जा सकदा है। जिवें आ हुण जो कुछ दिल्ली विच होया, उन्होंने जो कुछ किया तो वह हुक्म बदल दिता ना, अंदोलन करके संघर्ष करके ये बदलिया जा सकता है। पर वह जिहड़ा करता पुरख है उहदे हुक्म नू नहीं कोई बदल सकता, उहदा हुक्म अटल है। जो उहदा हुक्म है वह अटल है, उहनू टालिया नहीं जा सकता। असी उहदे नाल जुड़ना है अमृत बाणी का अभ्यास करके, सच हुक्म तुम्हारा, क्योंकि उहदे हुक्म विच कोई हेर फेर नहीं हुंदा। उहदा हुक्म बंदे नू देख के नहीं हुंदा वी इह बंदा शाहूकार है जां इह बहुत करोड़पति अरबांपति है जां इह गरीब, नहीं। बंदे नू देख के हुक्म नहीं हुंदा, उहदा हुक्म हुंदा साडे कर्म देख के वी कर्म किद्दां दा इहदा। माड़ा कर्म है तो उदा का हुक्म होएगा, चंगा कर्म है तो उस तरह का हुक्म होएगा। उदे हुक्म नहीं कोई कह सक चैलेंज कर सकता कि उस मालिक का हुक्म गलत है, उदा हुक्म सच्चा है, वह कदे गलत हुक्म करता ही नहीं है। ये सतगुरु दे राही पता लगा कि वह सच हुक्म तुम्हारा हे प्रीतम प्रभु जी, तुहाडा हुक्म जिहड़ा वह सच है, सत है, और तुसी सब तो उच्चे तख्त ते निवास करन वाले हो, जिदी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। जिदे बराबर भी तख्त जिहड़ा बना के, पिछले दिन ही बेनती की थी, सानू अकाल तख्त साहब नाल जोड़िया जिहड़ा है ही अकाल दा, और दुनिया के तख्त तो उच्चा है, नीवा भी नहीं है तो बराबर भी नहीं है, उच्चा रखे है। क्यों? क्योंकि ये उस अकाल का तखत है। सतगुरु दे राही हों बलहारी सतगुर चरना, मैं सतगुरु दे चरना तो सद के जावा उस दिन जिस दिन मैं मेरे प्यारे का दर्शन होएगा, क्योंकि सतगुरु ने मैनु उपदेश दे करके ये गल समझाई है कि जिदा तू दर्शन करना उहदा हुक्म भी सच्चा है और वो तख्त निवासी है। उसे तख्त दे उते गुरु नानक साहब विराजमान ने, उसे तख्त दे उते गुरु अर्जन दे महाराज विराजमान ने। तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवै चंदोवा, क्योंकि सत पुरख ते सतगुर दे विच कोई फर्क नहीं है। गुर परमेश्वर एको जान, गुरु दे राही परमेश्वर दी समझ आएगी, गुरु तो बिना नहीं। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। जे असी उस करते नू मिलना चाहते हाँ, उहदे दीदार करना चाहते हाँ, उहनू समझना चाहते हाँ, फिर सानू सतगुरु दे चरणा च जुड़ना पएगा, ज्ञान लेना पएगा। तो सतगुरु जी ने मंत्र उपदेश दे करके समझाया कि उहदा सुभा शीतल है, उहदी दृष्टि नज़र दे विच बड़ियां बख्शिशां ने, वो सुजान है, वो सारियां दे दिलां दियां जानण वाला है, उहदा हुक्म सच्चा है और वो सब तो उत्तम तख्त दा निवासी है, जिथे दुनिया दे तख्तां वाले भी आ करके झुक जा

जी भी के अमृत वेले दे दीवान सजाए गए सजे हुए दीवानंद श्री आसा दिवारद शब्द कीर्तन से पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास सतगुरु जीओ अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जी आंद दर ते समूह साध संगत की हाजिरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटावान दर प्रवान करनी यात्रावां सफल करनिया दरों घरों गुरु सिखी जीवन नाम बाणी दियां दातां बख्शनिया कल

अवर काज त्रकते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सतनाम श्री वाहे गुरु साहे जी वाहे गुरु धन वाहे गुरु साहे जी तनासरी महला पंजवा।

सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनाव श्री महला पंजवा औखी कड़ी न देखन दे

नाथ नानक नावें बाईस नाथ रागु जिरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत अमरी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वढ़ेरे जैनो हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपता सिंह मेल संगत गुण परगास जैना हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिना हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लखास तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मान चितवहे उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर में जनते उपाए ताका रिजक आगे कर तरया मेरे माधु जी सतसंगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरया रहाओ जनन पिता लोक सुत बैंता कोई ना किसकी तरया सिर से रिजक समाहे ठाकुर काहे मन पौ करया ऊड़े ऊड़ आवे सै कौसा तिस पाछे बचरे छरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सिदां ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए

करकिरया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वर्त जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उबाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साईं।

कोए तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़े भई रे निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंक जो मोह पग नहीं चले हम देखा तहें डूबियले मन एक न चेत समूड़ मना हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवंत नानक तिनकी शरणा जैनो तू नाही विसरया आसा महला पंजवा भई बरा पतमान कुदे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा किते ना काम मेल साध संगत भाज केवल नाम संज्ञाम लाग पवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो जब तब संयम

आया कहो नानक हम नीच क्रमा शरण परे की रखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रद पारा हमरे दुष्ट सवय तुम काब हो आभा दे मुहि बचाब हो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सवय करतारा हो रक्षा निज कर दे करिए सबेर इनको आज संग्रिये पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो वर चहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन शतर हमारे मारिये आभा दे मुझे उबरिये मरण काल का त्रास निवरिये हो जाओ सदा हमारे पच्छा श्रीअस्तु जो करी हो रक्षा राख लियो मोहे राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप धरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जौन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जौन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहें हमारा जौन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आद्यंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सिवकन को सिवगण सुख दियो शत्रन को पलमो बद कियो कटकट के अंतर की जानते भले बुरे की पीर पछानते चिंटी दे कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने कट कट के पड़ पड़ की जन्ने जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब अकर्क कर तो कब हूँ तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप आपनी बूझ विचारे तुम सब ही ते रहत नरालम चाणत बेद भेद अर आलम ड्रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनीर अनाद असंभ ताका मोड़े उचारत पिता जाको फेव न पावत बेदा ताको कृपा होने अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव ड्रंकार का चीनत न भव आप आवणी बुध जेती बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं पूपा अंड जे रसे तज कीनी
उत्पज खान बहुर रच दीनी, कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकैठा। सगरी सृष्ट दखाए अचंभव, आजुगा श्रू स्यंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे वार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण गाता। जे आस्तु जे तव शरणी बरे, तिनके दुष्ट दुख्त हवाय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट न है। रक्षा हुए ताही सब कला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कला। कृपा दृष्ट तन जहे न हरे हो, ताकि ताप तनक मैं हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसती ताहे ओबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद्र दुष्ट दोख तेरा। खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो ओबारी। सर ठो मोहो हो सहाई, दुष्ट दोखते ले हो बचाई। खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो ओबारी। सर ठोर मोहो हो सहाई, दुष्ट दोखते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुम्हारे, तब ते को आंख तर नहीं आने। राम रहीम प्राण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद स्वभाव, बहुभेद कहें हम एक ना जाने। सिरियसपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे हो सब तोहे बखाने। दोहरा सगल द्वार को छड़ के, गए हो तोहारो द्वार। बही गए की लाज अस, गोविंदास तोहा। सगल द्वार कौ छड़ के, गए हो तोहारो द्वार। बही गए की लाज अस, गोविंदास तोहा। रामकली महला तीजा, अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर ना पाया सै सेती, मन वजियां वादाइयां। राग रतन परवार वरियां, शब्द गावण आइयां। शब्दो तंगाव हरी गेरा, मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब मिसारना अंगीकार, ओहो करे तेरा।
कार्य सब सवारिणा सवना गल्ला सम्रत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरा करता तेरा सब किच है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाहा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया करशां सुख मन वसिया जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु बिटो जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तदवस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तैस कहोआ तित घर अनहद बाजे आनंद सुनहो बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा भर हुरे बिनो मंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा भर हुरे बिनो मंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मुंदा मणि महला पंजवा थल विच तेना वस्तु पइयो सत्य संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरी है सब

तेरा कीता जतो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया तरस पया मेहरामत होई सत

हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैर रखाई मन बिलास पौहे साहेब के अचरज देख बड़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक

इतनी सेवा प्रदान करनी। धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का, सारे ही प्रबंधक वीर मुख सेवादार सरदार प्रतपाल सिंह जी और आप सारिया ही संतों का तह दिलों धन्यवाद, जिन्हां दे उपराले सदका सतगुरां ने समा बख्शिश किया पर रल मिल के यतन किया है सतगुरां की गोद में बैठ के सतगुरां की बाणी के नाल इस मन जोड़न का, सतगुरु सारे की हाजरी तन मन धन करके दर ते प्रवान कर, नामदान गुरसिखी जीवन चढ़ती कला बख्शिश करन जी, दासरियां नूं बख्शो असीस, अगले जथे पासों इसे तरह कीर्तन की हाजरी सरवण करना जी। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती।

गावो सोहेला स्वरे हो सृजन हारो तुम गावो मेदे नृपौ का सोहेलाऊ वारी जित सोहेलै सना सुख हो रहाओ नित नित जेड़े समालियन देखे गा देवन हार त्रिदान कीमत ना पवै तिसदाते कमण समार संबत सा लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सजन आसी सड़िया।